ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्श, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, तुन सुन नाम तुहारो जीओ। ईगा ऊगा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे, हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत, तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी, कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए, तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बो प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए, हार हार हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग दे सो होवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम, गुर सरन प्रभु रखवारे। जो कुंचर तनुए पगर चलायो, कर ऊपर कड़ निस्तारे। रखाओ प्रभु के सेवक।

किछु ना जानहू, हर माद पिता प्रतपाला, कर माया अगनित मेल ते, गुरु राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया, साब केल बिखार जस जाला, मन अंध पया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मान हार पाज, साब केल बिख काट।

जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो बिसराम सगल निद हर घर घरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप अरे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तने रा।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बीन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन किसन ओढ़े कामली।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रगाव बुरा पला किस आपस ते जाने एई सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जोत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

एक सच्चा सब सेवदी तुर पाग मिलावा होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरहों कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जेवड़ अवर ना।

परे उधरे जन नानक हर कृपा धारी उर तरे ओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध प्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंदराद करव्या शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरिया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख।

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सावास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखे हर मिले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत घर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत सरदा उपजे गुरसबदी हर चाख साब मन तन हरिया होया।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा विसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू मोहल्ला पंजवा चरण कम प्रवरा के चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए सच्चा सोए सुख पाया फिर।

आगाए मारू मोहल्ला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो परगास काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रघाव जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निघार जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा सच थान सच बैठ कर सच स्वाव बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू महला पंजवा वेद पुकारे मुगते पंडित

माया माध मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आपत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अहंग मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस घी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

गुरपूरे सावास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, साचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाख्या, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लग बंद विगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभ हेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया,

पाए, तो जोगी ए जुगत पछाणै। गुर के शब्द विचारी जीओ, संजोगी तन पर मेला होवे। गुरमत विचों दुरमत खोवे, रंग स्यो निधरलिया माणै। अपने कंत प्यारी जीओ, सतगुर बाजो वैद न कोई। आपे आप निरंजन सोई, सतगुर मिले मरे मंदा। होवे ज्ञान विचारी जीओ, इहो शब्द सारस नू लाए। गुरमुख तिसना भुख गवाए, आपन लिया किशु न पाईए। कर किरपा कल धारी जीओ, आगम निगम सतगुरु दिखाया। कर किरपा अपने कर आया, अंजन माहे निरंजन जाता। जिन को नदर तुम्हारी जीओ, गुरमुख होवे सो तद पाए। अपना आप विचों गवाए, सतगुर बाजो सब तंद कमावे। वेखो मन विचारी जीओ, एक परम भूले फिरे अहंकारी। एक ना गुरमुख होमे मारी, सच्चे शब्द रते बैरागी। होर परम भुले गावारी जीओ, गुरमुख जिन्नी नाम न पाया। मनमुख बिरता जन्म गवाया, अगे विण नावे को बेली नाही। पूजे गुर विचारी जीओ, अमृत नाम सदा सुखदाता।

युगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बर बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसर नाही निम

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कछु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पहाए अपहाए जो निवटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण शरण सनात त्यो मान।

क्या जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया, तापत राखे ठाक रखाया। कामल विगास हरे सर सुभर, आत्म राम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए, क्यों रही ये चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आप उपाया जगत सुबाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस, साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर, ज्यों ने

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतरनाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा पूरे गोर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रौजोनी फिर आया आ भूला जा खसम भुलाया हर जू मिले ता गुरमुख बूझे तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मोह लै बोलै ना हम गुणा सेवा साधी डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे सो होएगा आपे बख्श लए सुख पाए सदगी नाम निवासी है। इहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा सच तन जम्या टोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे आपे बख्श लए नाम दीजे गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई मानवक अंधे किशु न सूझे गुरमत नाम परगासी है। मानवक होमे माया सूते अपना करना समाले अंत विगूते पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच सारा ही साचे ही साच पतीजे हे। तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बगसे दे वडियाई गुरमत यो मन पीजे हे। माया लहर शब्द निवारी यो मन निर्मल होमे मारी

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे विसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज समाया।

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में सोब सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीस, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, इस बिन दूजा अवर न दीस, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी सब

तरी केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असर संघारे जग जीवन अवनासी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईस नरसिंह नारायण।

इनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, होंबलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समर्थ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाज अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता, अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया, तेस्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वसे सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा शरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने, ताकि कीमत कहन न जाई, जड़ कद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दूग सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे, कह के आवनावना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहन न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए, तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तो गुण लाख वकाए, गुण ते गुण मिल पाई है, ये सदगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाई।

कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासीए।

नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे सेई ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए जे जांदे बिल मना होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई श्लोक मोहल्ला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी जे सदगुर माए सुमागे मोहल्ला तीजा मन के अदक तरंग क्यों दर साहिब छुटिए जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटिए जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाहीए सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया।

मंगिए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी, जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी, दोवें तरफा उपाई होन, विच सगत से वासा, सगती किने ना पायो, फेर जन्म बिनासा, गुर सेवे है सांत पाई है, जप सास गिरासा, सिमरत सास्त सोध देख,

वाचनी सुखी हूं सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। और कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवई मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाई है सब तिदे जचा, जो नानक आप नचाएदा तिव ही को नचा। सुध मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई सिस उतार। नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार, महला पंजवा निहु महिंजा तऊ नाल ब्याने कूड़ा वे देख। कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना देख, महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार। काजल हार तंबोल रस बिन पसे हाबरा शार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया, गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया। हर आग्या होए वेद पाप पुन विचारिया, ब्रह्मा विष्ण महेश त्रैगुण विस्तारिया। नौखण पृथ्वी साज हर रंग सवारिया, वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया, तू जाने सबिद आप गुरमुख निस्तारिया। दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा, एक भोरी ना वे छोड़। जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह। महला पंजवा दुर्जन तू जल पाड़ी, विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ से जड़ी। मैंडा हब

में पाईया, एक मंदिर पंच चोर है, नित करे बुरियाईया, दस नारी एक पुरख कार, दसे साध लोभाईया, इन माया मोहनी मोईया, नित फिरे परमाईया, हठा दोवे कीती हो, सेव सगत वरताईया, सिव अगे सगति हारिया, एवे घर पाईया, एक विचों ही तुद रखिया, जो सत्संग मिलाईया, जल विचों बिंब उठा ले हो, जल माए समाईया, दखने महला पंजवा, आगा कूत्राग, पिछा फेर ना मोडड़ा, नानक सिज अवेहा।

जान ही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा।

कर हीड़े हिक आधार पियो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है यो पापी मूल न तगे अहे कर करे सो अहे कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया तिस कर दी बाण अपग हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सो तनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा मानकू मोह माओ डिणना तनी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए।

पंडिया कवन को मत तुम लागे, बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों, आराम ना जपो अपा गे रखाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खारे चंदन जस पार, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल, हर जना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबर चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्रा पाणी,

तत जलाया दीप करह तेलो तन तिर मेलो तन ओ माहे सरसी अवगुण मारी मरे न सीजे गुण मारी ता मरसी नाम भगत जे ने कर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कपट।

सुजान बिधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रापाने ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सा तनहा प्यारी अब भक्ति पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख आपत की नाही मन तन वसै मुखे मन तन रब रहिया जग जीवन गुर सबदी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उदपुज कड़कड़ जोत समाणी दर्शन देहो दया।

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलगत नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी।

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया, गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर के नाए लये, सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गोर, हर घर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी।

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रमो सागर।

संग स्वामी हार गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक कहो हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ हर कृपा सत संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

कछ व्यापै संत संग व्यवहार रखाओ कर अनुग्रह आप राखियो नहीं उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै।

ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल, छूट गई संसारी रगाओ, ताते लाए तौ सच लागे, साचे के व्योहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी, आपे रतन जवाहर मान, आपे गए पासारी, आपे दहेदस आ

पाया। जैसे खूंद खुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रघाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन, बौर न देखे आए। कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अदफारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे कारण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, सगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खिन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, उन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गर फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई।

होए। निकर वसै सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखण हार, नानक नाम रखो उरतार। भैरों महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एक ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर शब्दी विचारा। हर जियो ससंगत मेलाए नांग किसनों दे वडियाई,

से पूरे वड़भागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छै सोई फल पावै, गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा, दुख जमे दुख मरे, दुख जकार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिस्ता महे समाए। त्रिग त्रिग मनमुख जन्म।

थीत गोविंद जन्मा सी परम भूले नरकर्त कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रघाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे ना जाए नानक का प्रभ रहो समाए भैरो मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नी लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रगाओ तोय अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रा तू वरसंता कर सुख वसया।

अरहो अराम रसायन नित उड पीवो हार हार हार हार सुना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

काम रोग मैगल बस लीना, दृट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुर जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो,

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नगार स्वामी।

मान मूड मुग्ध हुए चतर सो ज्ञान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसूख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो मोहल्ला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हुए एक परीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हुए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान भैरो मोहल्ला पंजवा रोग कमन जा राखे आप तेजन होए ना दुख संताप जिस ऊपर पर कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम ये चीत आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ताके जाम रखाओ जब त्यो न सो तब किने उपाया कमन मूल ते क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रद

आराम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमाय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना।

चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हर हाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत दो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माए अकेला जात जात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे साध संग।

अंधारा जिस नाम हृदय तो पुरख परवान ना बिना फिर आमन जान। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल साध संगत मैं लखे गोपाल आमन जान रह गई सुख पाया।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पनाव मेरे पाई, नाव मेरे संग अंत होए सगाई।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

राख रह माना सब कोई चलन कहत है ऊहां ना जानू बैकुंठ है कहां अरहाओ आप आपका मर मन जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही चर

गढ़ पीतर यूं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सिझाया, सात संतोष।

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुहे आनी दूध पियो गोबिंद राय दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे हर का

भगत जिना को द्योरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी।

तहुना तूड़स रहया समाए, नामे चित लाया सचनाए, जैसी प्रीत बार्ग अरमाता, ऐसा हर चित्ती मन राता, पर मैं नाम देव

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने।

महामवार की चढ़िया सदा बसंत पर बड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया होमे सुरत विसार होमे मार विचार मान गुण विच गुण लै सार अरहाव कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शा

मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाए नाम हरी रखाओ। बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी। बिन भागा सत्संग न पाईए कर्म मिले हर नाम हरी। घट घट गुप्त उपाए वेख प्रगट गुरमुख संत जना। हर हर करे सुहा रंग पीने हर जल अमृत नाम मना। कौ तख्त मिले वडियाई गुरमुख से प्रधान किए। पारस पेट पए से पारस नानक हर गुर संग थिए।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़पागे, पौन पानी की ए दे शरीरा, हो में रोग कड़न तन पीरा, गुरमुख राम नाम।

जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिवलाए। बसंत महला तीजा भगत वछर हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की सात मिलावा होए। भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर कै हेत साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सबदी विचो होमे खोए। हर जीव आप से मन आए, सदा सांत सुख सहज समाए, साच रते तिन

आओ, एको सेव हो अवर ना कोए, जित सेवे है सदा सुख होए, ना ओ मरे ना आवे जाए, तिस बिन अवर सेवी क्यों माए, थे जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सस होए, जिन ज्ञान की

गुर शब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वड्याई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभु तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ में समाहे।

साधु संगत गुरे बताई ऊहा जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख।

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल। अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान। जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप। राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सा मिटे अंधेर। हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग। संत जनासो सदा संग रहाओ संत जन किया उपदेश। जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान। गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग। मन पाप करत तू सदा संग।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद भावे जिसनु तू रंग तरता, तू वड़दाता तू वड़दाना,

काम रखाव यो जग तुए का पहार ते साचा मान्या के विचार तन दारा संपद ग्रहे संग न चाले समझ ले एक भगत नारायण होए संग कौ नानक पाइते एक रंग बसंत महला नामा कां भूल्यो रे झूठे लोभ लाग कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रखाओ सब सुपने कै यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजतागे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सब साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगतहीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, तब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए, सदा मुक्त बंधना सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्ते हुक्म सुमाए, दूसु सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे,

निर्माल निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा।

लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो।

कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उदरण का साज नाहे, पाबंद नित पौत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खावे, जाके तीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिन मह गवार, माया मोह मोह भरमिया, किरतरे कर करमिया, करने हाँ।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो।

परम जोत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझ स शब्द विचारे, मानमुख हीन होशी मद झूठी।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद, गुणी निदान ससृढ़ का प्रभु, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एका, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यों गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत, हर देव दर्श मन चाओ। सारग मोहल्ला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानक ते छपाई, साखी पूत पवान रघाओ, वैष्णो नाम करत खड़कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संसबा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान।

करे सवरता जो सबरी दंपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़या जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ भावे तिवे बुलान। साह संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी तेरा बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो तबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए गए बारे तब ते थान थेरो। जौ दिन रैन तऊ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊड़ सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आनेओ ता को पिन दिष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारेओ अंबे अंब मेलो। सारग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा लेनो नाम अमृत रजनी को। बाबर देश्यो गहे रहा रहाओ दुलभ जन्म किरंकाल पायो। जातो कौडी बदलहा काथूरी को गाक आयो। लाद्यो कालर बिरख जिवगा आयो लाभ लबन के ताई। ऊंठा गौरी से उर्ज पहा काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा। सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा। आई मष्ट जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दर सानेगा। आन उपाव न को सूझे हर दासा सरणी पर रखा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरगा। सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रे

ते ना ही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो कृपाल बीठला तेन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते ना ही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जा कुदरन सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणद मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दर्श देख नैन।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर तब करता नेमक नेमक गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परे कुसुमाही। तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रगाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिस गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग

साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहे दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अनना ही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रघाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास बवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सबठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेमांग आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबंग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबान।

मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमन कहां गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाडला डावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते,

मेरो मन जड़ का तुझे सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रा मेरे, जो जाने त्यों पारे रगाओ, जब भूखो ता भोजन मांगे, हकाए सूख किनारे, तब अरोग जब तुम संग बस्तो,

मदमान त्रो मोह दूर कर बपरे संग गोपाले जान रखाओ मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांग।

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आदि जुगात प्रभु की वड्याई जनकी पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बिचार्यो सगल संपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विसम पय विसमाद अंध पया नानक।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाए।

मुक्त को दाता एक सस्यों लेवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी ए ओड़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पंच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत।

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे। सतन वणजो सतनक संचो, कबू न आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही, अगन

सर्व कटा आधार, कोई न जाने तुमरी गत मित, आपे एक पसारा। साधना बैठा वो नान सागर पार उतारा, सारग महला पंजवा, आवे राम शरण वडभागी। एक बिन किस होर न जाने, अवर उपाप त्यागी रहा, मन बच क्रम आराधे हर हर, साध संग सुख पाया। अंत बिनोद अकथ कथा रस, साचे सहज सुमाया, कर कृपा जो अपना किनो, ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरीय, जो राते प्रभु निर्वाणी। सारग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही। सांत सहज मन पयो परगासा, बिरता कशना रही रघाव, हो कृपाल नाम देव अपना, बिनती ए कही। आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही, जैते उपजो तई समानो, साई बस्त अही। कहो नानक परम गुर खोयो, ज्योति जोत समही। सारग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद विसार सगले, पलो नाम सुवाओ रगाओ, चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिबलाओ। साध संगत होहे निर्मल, बौड़ जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू निता वेथाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सरबल जाओ। सारग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुगत पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का ना।

पाई गए सुख विश्राम। सोधत सोधत तत विचारयो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बेन आवर सगल बिद पूरी। सारग महला पंजवा, साचे सदगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नस, चरण कमल बलिहारा रखाओ सत परमेश्वर सत साध जान, निज हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की, अवनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाइए, सगल कटा आधार नानक वाह वाओ, कहो ताको जाका अंत न पार। सारग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे, रगाओ बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे। तो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे।

पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हार हार जप्यो नानक सो परवाना सारग मोहला पंजवा हर घर संत जिना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रखाओ संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीमन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन जो मीना जल से उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर्क की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन।

सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। ज्यो तू रखे ते विखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत कहे बल बल जाई।

आनंद मंगल गुण गाया। सारग महला पंजवा, तृष्णा जलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कतहु बाते, अंत पर तिहार रगाओ। सांत सुख न सहज उपजे, ये इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने, काम क्रोध है जार, संसार सागर दुख व्यापे हो।

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम ना

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब स्थार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे बौर जन्म ना मार।

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सारग मोहल्ला पंजवा तंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रयो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै

मन संतन पाए बेचायो, जात जन्म कुल खोइए, हौ गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए, प्रभ किरत किरत करी, गुरमुख उपदिसया नानक सेव एक हरी। सारग महला पंजवा, लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड़ हस्त पाखान जंत, सर्व में प्रतपाल तू रहाओ, ने दूर पूर हजूर संग, सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल, नान प्रभ कृपाल तू। सारग महला पंजवा, करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर, नौपरी चुनंतकार सुंदर, अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रघाओ, तीन पौने लपटाए रही, काज कर्मना जात सही, उन मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास, काड़ दीनी जमकी फास, पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सहाई, कां की माल पिता सुध बनता, को काहू को पाई रगाओ, तन धरणी पर संपद सगरी, जो मान्यो अपनाई, तन छूटे का संग न चाले, कहां ताए लपटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तस रुचना बढ़ाई, नानक कहत जगत सा मिथया, जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा, कहा मन बिखिया स्यो लपटाही, या जग में कू रहन न पावे, एक आवे एक जाही रहाओ, का को तन तन संपद का की, का स्यो निहो लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे, जो बादर की शाही, तज अवमान शरण संतन गहो, मुक्त होए शिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन, सो सुपने पी नाही। सारंग महला नामा, कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद बिखे अरस रचियो, आराम सरन नहीं आवे रघाओ, यो संसार सगल के सुपनो, देख कहा लोभावे, जो उपजे सो सगल बिना से, रहन न को उपावे, मितया तान साचो कर मान्यो, ए विद आप धावे, जन नानक सोऊ जग मुक्ता, राम भजन चित लावे। सारंग महला नामा, मन कर कभू न हर गुण गायो, बिख्या सकतरे हो निसबासर, इनु अपनो पायो रगाओ, गुर उपदेश सुनियो ने कानन, परदारा लपटायो, पर निंदा कारण वो तावत, समझो न समझायो, कहां कहो मैं अपनी करनी, जेबद जन्म गवायो, कहे नानक तब अवगुण मोह में, राख लियो शरणायो। राग सारग अष्टपदियां, महला पहला कार पहला, एक ओहंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन क्यों जीवा मेरी माई, जय जगदीश तेरा जा जाचो, मैं हर बिन रहन न जाई रघाओ, हर की प्यास प्यासी कामन, देखो रहन सबाई, श्री तरनाथ मेरा मन लीना, रोजाने पीर पराई, गणत शरीर पीर गए हर बिन, गुर सबदी घर पाई, हो दयाल कृपा कर हर जियो, हर से रहां सुमाई, ऐसी रफ्तर हो मन मेरे, हर चरणी चित लाई, विषम पय गुण गाये मनोहर, निरपो सहज सुमाई, हृदय नाम सदा तुन निचल, कटे न कीमत पाई, बिन नावे सब कोई निरतन, सदगुर बूझ बुझाई, प्रीतम प्राण पय सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई, जब की उपजी तब की तैसी, अरंगल पई मन पाई, सहज समात सदल हर्ष्यो, जीवा हर गुण गाई, गुर के सबदरता बैरागी, निरकर ताड़ी लाई, सुदरस नाम मारस मीठा, निरकर तत गुसाई, तैही मान जय ही तय राखिया, ऐसी गुरमत पाई, सनकादक ब्रह्माद इंद्रादक।

ओ पंजन गुरमुख एको डीठा रगाव कोड कुटंतर के पाप बिनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवर न सूजे दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन कड़ वस्या सहजे रहे सुमाई शब्दर तेसे रंग चिरूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार हराती लाल पई रंग लाई आराम नाम ने केवल जानिया मन तृप्त्या सांत आई पंडित पढ़ पढ़ मुनि सब थके परम पेघ थके पेघ तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाएगे जिन विचो आप गवाया साचे शब्द सहतन उपजे मन साचे लिवलाई अगमे गोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वर्त विरला एक पछाणे शब्द मरे ता सब के सूजे अनदिन एको जाने जिसनु नदर करे सोई जन बूझे

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर अंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद खोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा स दाता कर्म विदाता, जिस पावे थे ना ए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे, से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संजम करनी किरत कमावे, आवन जान रगाई, थे दर साचे साज कमावे, जिन गुरम

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेखे। सारग महला पंजवा, अष्टपदिया कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुसाई प्रताप तुहारो डीठा। करन करावन उपाय सुमावन, सगल छत्रपद बीठा रखाओ। राणा राओ राज पै रंका, उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत, ताको सगल कटा जस गायो। उपमा सुनो राजन की संतो, कैत जेद पाहुच। बेसुमार वर्षा दा तारा, ऊचे ही ते ऊचा। पावन परोयो सगल अकारा, पावक काष्ट संगे। नीर तरण कर राखे एकत, कोई न किस ही संगे। धड़कड़ कथा राजन की चल है, कर कर तुझे उमाहा। जी जन सब पाछे करया, प्रथम रिजक समाहा। जो कुछ करना

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्स देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कर कर पूर्ण गए अलपाता कर कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग जो रचन किया हावरस माने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्श लीना जो

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई।

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पशु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

दुर्मत अंकारी साहेब शब्द ना ऊचरै माया मोह पसारी अंतर लालच परम है परमे गावारी नानक नाम न चेतई जुए बाजी हारी श्लोक महला पहला लक्ष्यो प्रीत होए लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक कड़ी मैं जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चेतन आवे कौड़ा तन ताए जाए मिठा कौड़ा दोवे रोग नानक अंत विगुते भोग चग चग चखना झगड़ा चाख चग चग जाए।

आपे सृष्ट उपायन, आप करे विचार, नानक किसनु आखिए, सा वर्ते आप सत्यार। महला तीजा, हर गुरमुख तिनी आराध्या, जिन कर्म प्राप्त होए, नानक हो बलिहारी तिन कौ, जिन हर मनवस्या सोए पौड़ी, आस करे सब लोक, बहु जीवन जानिया, नित जीवन कौ, चित गढ़ मंडप सवारिया, वल वंच कर उपाव,

दिती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर ते टिके, होर ते प्रगट ना होए। अन्ने वस माणक पया, घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई, अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई, ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए, ता वथ लहे नौनद पल्ले पाए। कर होंदे तान जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोझी ना होए। शब्द शीतल मन तन वसे, तिथे सोग वियोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्व करे, मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किने ना पायो, फिर आवे जाए महला तीजा। मन अंध पया मिलिया हर प्रीतम, सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होड़ माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहेन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगतनी उबजी, भूखे दान ना दीना रखाओ, कामना बिसरयो क्रोध ना बिसरयो।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेगा, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

अलख ना लखिए अगम अजोनी तू नाथा ना तनहारा इस पै देख कहो तू कैसा सब जाचक।

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वडियाई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई। मान रे

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बगसे देव डियाई, जो तुर मिलया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। विख्या मायर

राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण तिहाई।

रे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहू ताया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार की प्रभु अपने नानक दास शरणाया मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन चिते उलास आस मिलबे की चरण कमल रस पीवन रखाऊ।

सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तन होत बिरानो। लोग दुराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए बिख खाई रीमा।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवां मन कने प्रमे बने।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल मिला।

अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावै, सदगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण देश

प्यारे बिन इखे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास, जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मरार महला तीजा अष्टपदी

अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते, एक निमख मनो नाम विसर गोपाल गुण नग सदा संगे सर्व गुण जगदीसर मन मोहे लीना चरण संगे।

महा पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, कृपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लियो सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक रंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन घराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महा मंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरन तिन की।

गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिना विटो हो वारिया सलोक मोहला तीजा ऊन व आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासो लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया हो न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया।

जाओ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सदगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

प्रीति भगत न हो वई, मैं सतगुर ना लगे प्यार, तू प्रभ सब तो सेम दे, एक ढाडी करे पुकार, दे दान संतोखिया, सच्चा नाम मिले आधार। श्लोक महला पहला, राती काल कटे दिन काल, छिजे काया हुए पराल, वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल, हुलिया चुक गया तब ताल, अंधा चख चख पया चेर, पिछे रोवे लियावे फेर, बिन बूझे के सूझे नाही, माया रोहे रोंदे मर जाही, नानक खसमे एवे पावे, सही मुए जिन चेतन आवे। महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मोई, मुआ वैरवादी, वन गया रू विणसया, दुखी दे रुली, किथों आया कह गया, क्यों न सीओ क्यों सी, मां ने मुख गल्ला गोईया, कीता चाओ रली, नानक सच्चे नाम बेन, सिर खोर पद पाटी पौड़ी, अमृत नाम सदा सुखदाता, अंते हुए सखाई, बाजगुरु जगत बौराना, नावे सार ना पाई, सदगुर सेवे से परवान, जिन ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहेब सो सेवक तेहा, जिस पाणा मन नमसाई, अपने भाणे कौ किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रजे नाही, मूर्ख भुख न जाई, दूजे सबको लग विगुता, बिन सदगुर बूझ न पाई, सदगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनों किरपा करे रजाई। श्लोक महला पहला, सरम तरम दुइ नानका, जे तन पल्ले पाए, तो तन मित्र ना कांडिये, जित सिर चोटा खाए, जिनके पल्ले तन वसै, तिनका नौ फकीर, जिनके हिरदे तू वसै, ते नरगुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़िए, जाए तलग गए दुख, नानक सच्चे नाम बिन, किसे न लत्ती पुख, रूपी पुख न उतरै।

भगत छोड़ है अंध गुरु जिन केरा, मासो निमे मासो जमे हम मास के पांडे, ज्ञान त्यान का सूझ नाही चतर कहावे पांडे, मास पुराणी मासक तेबी चो जुग मास कमाणा, जद काज व्याय सुहावे उथे मास सुमाणा, इस्त्री पुरख निबजे मासों पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसते नरक जांदे ता उनका दान ना लेना, देंदा नरक सुर्ग लेंदे

अकल मन गोर न मानी। मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया। पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

घर केरे हर कड़ राम रव्यो गुपलाक। हर के संत मिले हर प्रगटे उग्र गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उर तारे हर रसक रसाक। हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बशराक। हर के संत जना में हर हर तेजन उत्तम जनक जनाक। तिन हर हिरदय बास बसानी छूट गई मुस्की मुस्काक। तुमरे जान तुम ही प्रभ किए हर राख लियो अपन अपनाक। जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक।

आथ अदृष्ट अगोचर नाम त्याए सत संगत मिल साधु पाथ। हर घर कथा सुनी मिल संगत हर घर जप्यो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभु जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को प्रभु करो कृपा रखो जन साथ। कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल हर रतन जवेहर लाल हर गुरमुख कर टकसाल। हर हो कृपाल रहाओ तुमरे गुण अगम।

मन राम जिस रूप नारेख वडाम सतसंगत मिल पज राम बाड हो पागम थाम रखाओ जित गृह मंदिर हर होत जास तित कर आनदो आनंद पाज राम राम राम राम नाम गुण गाओ हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सदगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे पज राम राम राम तब सिष्ट तार हर तुम किरपाल करता सब तू तू तू राम राम राम जन नानको शरणागति द्यो गुरमती पज राम राम राम कानड़ा मोहल्ला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिलघर पादर बाट पाज हर रस रस हर गाट हार हो लिखे लिलाट रहाओ खड़ कर्म क्रिया कर बहु बो विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जड़ जटा जड़ जाट कर पेख ना पाइये हर ब्रह्म जोग हर पाइये सत संगती उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाहो तू पर पुर रहे या जल थले हर एक इको एक एके हर थाट तू जाने साबित बूझे आपे जन नानक के प्रभ काट कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रवलादो तोर हो लिखे लादो रहाओ बिख माया संच बहु चिते विकार सुख पाए गए हर फाज संत संत संगती मिल सतगुरु गुर साधो जो छोहे पारस मनूर पै कंचन त्यों पत जान मिल संगती सुध होवत गुरमती सुध हादो जो काष्ट संग लोहा बो तरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगती गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है।

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा जाके हृदय बसे गुर।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विकम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमूला।

आन लागै, अमर तो डार पूम पागै, बिगे रस्यों आसक्त मूड़े, ताहे सुखमान, काम क्रोध लोभ व्यापेओ, जन्म ही की खान, पातत पामन शरण आयो, उदर नानक जान, कानड़ा महला पंजवा, अब लोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो,

रेन संतना हर संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

विकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ।

है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मन गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रखाओ चलतो चले चले, दह दह दिस।

लोहा हिरन होवे संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो रहाओ। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावे गो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा,

वेद है गुरमुख, गुर परचे नाम ते आवै गो। हर हर रूप, हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावै गो। सागत नार सदगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया क्रंग लगावै गो। राम नाम सब जका तारक, लग संगत नाम ते आवै गो। नानक राख राख प्रा मेरे, सत संग

जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिरहर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आप

रूतम घर प्रवनाम है। गुरभजन सुभागे लीता दुख दाल दिल सबो लह गया। जा नाव गुरु घर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा मन अंतर होम में रोग है। ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग वन्याय मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने नानक सो प्रामय मिले। हो जीवा साध सुने पौड़ी जगन्नाथ जगदीश सर करते अपरंपर पुरख अतोल।

को सुने को उचर सुनावे, जन्म जन्म की मल उतर मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटिए हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराहे सब कुटुंब तरावे, जन नानक तिस बलिहारण जो मेरे हर प्रभावे, शुद्ध राग कानड़ा बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार, सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाओ, बसे कटा कट लीपना शीपे बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी बीठल ऐसा, निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग, गुर प्रसाद रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी एक तिलनी कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गावे गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमाधो गुण गावे हर राया, तुम जल निध हाँ मीने तुमरे तेरा अंत न कतहु पाया, जन कौ कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया, जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए सब कालय मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे जन नानक सरन।

आपे जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रखाओ रसना एक जग गाए न साक बहु कीजे बहु रसन थे बार बार खिन पल सब गावे गुण कह न सके प्रभ तुमन थे हम बो प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे प्रभ दिखन थे।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। इत उत दह दिस रवे मेर तिने समान जद कता तद पेखीए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण महला पंजवां गुरनाद तुन आनंद वेद।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हारं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को थम।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोत पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग

करे तो नरक परे। एको सब एको प्रवर्तै सब एक स्ते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रलै।

लेव उर मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच

परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मेल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसार हो सेव सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समागे जल थल मीत सो हर सेवो नीता नीत ता सिखाई जे कोए न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

आड़ जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ जो जन राता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिन रस आया सोई जाने पेख पेख मन में हैरान सो सुखिया

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा। सिमरत नाम किलब सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध बजा।

सेवंत सूरा चदर दिसै बेखम थार बसंत पूछै नै सिमरंत मरणं कदांचै होवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकरखते सबदंग रतन हितंग माया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत ततरागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वतर्थानें दृष्ट तोयं अमोघ दर्शनं प्रसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियंग जाप जपना पटंत रूपं कटंत दीपं पटंत रव ससीर नक्षत्र गगनं पटंत बसदा गिरतर से खंडं पटंत ललना।

पूर्ण पुरुष भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह विसरंत नारायण है, न समर्थं न सेवकं न प्रीत परम पुरखोत्तमं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

हर घर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर्वेण कुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धि अंगमार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते बिरथा अनुग्रह गोविंद है जस सिमरण।

साध संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी।

तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर है नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास है नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल है दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेपना लिप्यते विखया भयंत अमृतं दुष्टा सखा स्वजन दुखं भयंत सुखयं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं साम्यतर सत्र है भगवंत भगत पा

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुग

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण तब भय विमुंच।

लूटना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम

निदान साहब जब पूछे तरमराए कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया भाई रहा ना बंद कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगा मन जाए सरपन होए के अवतर जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार गधी होए के अवतर पार सहे मन चार कबीर चितराई अत करी हर जब हिरदे माहे सूरी ऊपर खेलना गिरे तां ठाहर नाहे कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम कबीर सोई कुर पली जा कुल हर को दास जे कुल दास ना उपजे तो कुल ढाक पलास कबीर है गे बहन सगन कान लाग तजा फहराहे या सुगते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाहे कबीर।

कन खर्षाया बरख परे सरताल। चातक जो तरस तरह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्की जौनस बिछर।

निर्दावे दज होत है, निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा, पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे,

पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उभरे भाग, कबीर संसा दूर कर, कागद दे बिहाए, बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए, कबीर संत न छाडे संतई, जो कोट के मिले असंत, मलयागर पोयंगम बेड़ेओ, ता सीतलता नात जंत, कबीर मन सीतल पया, पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जा रया, तो जन के उदक समान, कबीर सारी सिरजनहार की, जाने नाही कोए, कह जाने आपन तनी, कह दास दीवानी हो।

टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। नहर पजयो ना खत फटयो काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कुकर पौकना तरंग विषय उठता है।

वीर जो तो साध पिरम की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। टूट डोले अंध गत हर चींत नही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोय न होसी मित फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग स्तानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण एक कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप की धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभु तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभु सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत कर सत सत सत्य सत पणिए दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीबान सच सच्चे पै थरयो सच्चे तख्त निवास सच तपास करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिए ब्रह्मादक संकाद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पवन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बिन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पावा पेखत सुन।

हो पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल भाण तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन उब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अन पय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले वे लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चर तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजय।

मुक्त न पावे। और कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, और कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। और नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखे नौ कियो, ते अक्यत संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग। सुनत समाध शब्द जिस केरे, पुन दुखन नास सुखदायक सूर। जो धरत ध्यान बसत ते नेरे, पूरो पुरख दे घर सिमरत। मुख देखत अग जाए परेरे, जौहर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। होती जो प्यास पियूस पिवन की, वंचित सिद्ध को बिद मलायो। पूर्ण पोमन ठौर बसो, रस बासन स्यो जो दहं दिस थायो। गोविंदवाल गोविंदपुरी साम, जलन तीर बपास बनायो।

गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरत गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा घर नाम दियो जे देख चिरन अगन हरयो निज बासर एक समान ध्यान तो नाम सुने सुद पान डरयो पण दास सुवास जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो आराम दास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहजुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चौ जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जा की शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलह हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णन सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोर सैन संग सोभ कहत माँ जसोद जिसह दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेर पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सके ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नागस हरयो नख बजार जियो संक चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेव जीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਂ ਕੁਵਰਲ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਹੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀ।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सबिद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह ज्यों कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरहत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुर नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो बस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नहों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो। एक ओंकार

गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले इत सच्चे दरबार, तिन बहिंदिया उड़दिया कदे ना विसरै, जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़ै, जे मिले सिरजनहार, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार, नदर करे जिसे अपनी इस लाए हेत प्यार, सतगुर की सेवे लग्या भौजल तरे संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रापाई है सब दुख निवारण हार, मानव सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए, उत कलत कुटंब है माया मोह वधाए, दर्घ है लेखा मंगी है कोई अंत न सकी छिड़ाए, बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्म सेवे हुक्म आराध्य हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्तन एम सो संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागण जे हुक्मे बुझे सतगुर सेवै लिवलाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लए मिलाए, मानव हुक्म ना बुझे बपड़ी नित होमे कर्म कमाए, वर्तनेम सो संजम पूजा पाखंड परम ना जाए, अंतरों कसुद माया मोय वेद जो हस्ती शारे उड़ाए, जेने उपाए तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करत है पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अनदिन सेवा करत समाए, अंतर सतगुर गुरु सा पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने

गावे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दे साख सुनावे बंगालम माद माद वगावे ललत बिलाव लगावगी अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र दुतिया माल कौशक आलाप संग रागनी पंचो थप गोंड करी अरदेव गंधारी

तिथ भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेख नजर निहाल तिथ खंड मंडल वर।

तीर्ज सुनियार अहरण मात वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमागम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू दयापे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू दयापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों किरपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना।

आओ जप तप संयम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर की

का सोहिला हमारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया नो देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेलो, देहो सजन आसी सड़िया जो होवे साहब स्यो मेलो। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरी है नानक से देह आवन। राग आसा

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण है, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घट है गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सहेलड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया, मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै, सच में सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपो क्यों थी है, गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखिए आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ उचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी, सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिए, नजर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतरे, बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते अग्यास, नानक देख दिखाई है हों सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी, मुठ्ठी दूजे पाए। कलर केरी कंद ज्यों, अहनस केर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है, पिर बिन दुख न जाए। मुंदे पिर बिन क्या सिंगार, दर कर टोई ना लह, दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई, सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया।

चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लगई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए साख सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिसंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघीऐ दरगै पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है खोटना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाहा, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा हुए, श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनदन दुख विहानी। मनमुख अंद न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, तां हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए। जप जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा, मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार। सेजै कंतना आवई, नित नित होए खुवार। पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे। जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी।

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना।

जो सच रहे लिवलाए, नदरी नाम त्याई है, विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे पाग सत संगत लहै, सतगुर पेटै जिस आए, आन दिन नामे रतिया, दुख बिखिया विचों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा, नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। आपना भउ दिन पाए उन जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकाई अन हर

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है होमै विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगुणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुरसा लाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसे नाही काल ओते साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार। उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार। जां होवा

एको विसरना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपां गुर की पैरी पाहे। रहाओ दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजीऐ जा हिरदै सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डै धोए। सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संग मसक दे तूठे पावा देव। सब किश वसगत साहेब है आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहार नै मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इकसै दी सामग्री इकसै दी है रीत। इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचरचीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवा। सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। मेरे मन एक सस्यो चित लाए। एक बिन सब धंध है समिथया मोह माए। रहाओ लख खुशियां पात साहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस तो पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहा पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा। ढोई तिस ही नू मिले जिन पूरा गुरु लब्बा। नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। श्री राग महला पंजवा। सोई त्याई है जियड़े सिर शाह पातशाहो। तिस ही की कर आसमान जिसका सब सविसा हो। सब सियाण पा छड कै गुर की चरनी पाहो। मन मेरे सुख सह सेती जपनाओ। आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ। रहाओ तिस की सरणी पर मना जिस जीवड़ अवर ना कोए। जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहेब सच्चा सोए। सात संगत होए निर्मला कटिया जम की फास। सुखदाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास। बहुतो बहुत वखाणी है ऊंचो ऊंचा थाओ। वरना चेहना बहरा कीमत कह ना सकाओ। नानक कहो प्रभ मया कर सच देवो अपना नाओ। श्री राग महला पंजवा। नाम ते आए सो सुखी तिस मुख उजल होए। पूरे गुर ते पाई है प्रगट सब नी लोए। साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए। मेरे मनु हर हर नाम ते आए। नाम सहाय सदा संग आगे ले छाए। रहाओ दुनिया किया वड्याईया कम न आवै काम। माया का रंग सब फिका जातो बिनस निदान। जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग। उपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग। तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसे हम मैं ताप। नानक कहो गुर भेटिया बिनसे सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखनहार। एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगले